दोस्तों, ये जिंदगी भी इसी तरह छोटी ही है। आज का पल कल बन जाता है और कल का बीता हुआ लम्हा परसों बन जाता है, इसलिए ये जिंदगी दो चार खड़ी होती है, इसे हंसी खुशी से बिता देना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी घड़ियां आती हैं। कभी खुशी के मौके आते हैं और कभी हमें अच्छा मूड नहीं होता, वैसे लम्हे आ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को संभाल कर ऐसी घड़ी में रखते हैं।

भाई हम भी अपनी राम राम कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हर गाना जो हम कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अच्छा लगता होगा, इसी उम्मीद के साथ अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। नमस्कार।

0: एफएम 16.9 एक मेगा हर्ट्स पर एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम।
1: वंदे मातरम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।

0: केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Kashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to the Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till 29th of this month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all the existing electors for verification and updation of the electoral roll.

You can run, you can hide, you cannot escape from nature. Nature is everywhere, in the air you breathe, in the breeze that comes through, in the drops of rain and the sunshine. Nature is everywhere. Nature is why you exist. Well, Van Mahotsav 2026, more trees, greener tomorrow, and a strong future. What is the theme of this year? Let me tell you. Well, 2026 says Festival of Forests. It's an annual week-long celebration. Schools, companies, government bodies across the country, they plant trees together at the start of the monsoon. The festival was launched in 1950 by K.M. Munshiji, the Union Minister of Agriculture and Food, to build public enthusiasm for planting and protecting trees. Well, Van Mahotsav. इतना खूबसूरत लगता है इस शब्द के साथ ही, है ना? और इस बार 2026 में सावन 2026 हो रहा है और ट्री प्लांटेशन गाइड भी दे चुके हैं. अगर आपको भी वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्लांट अ ट्री राइट नाउ. जस्ट प्लांट अ ट्री वेर एवर यू थिंक दैट द ट्री विल ग्रो एंड नर्चर इट्सेल्फ. ब्यूटिफुल. एक पेड़ माँ के नाम. 2025 में ये था थीम और 2026 में है फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, वन महोत्सव. बिल्कुल ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल थॉट एंड ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन इंडीड. एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड आई एम ऑलरेडी. ट्रस्ट मी, 15 मिलियन ट्रीज वर प्लांटेड last year. So many trees and 1700 corporate partners took part, and as we say, trees of monsoon as well. Nature is indeed beautiful, and if you can contribute to it, nothing like it. Absolutely. Another beautiful track, this is Havana by Camila Cabello. Take it away.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 म्यूजिकली योर्स। जी हाँ, तो इस सेगमेंट में हम सुनेंगे ढेर सारा बॉलीवुड म्यूजिक, जहाँ बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करेंगे, अवेयरनेस की बातें भी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आप जो जश्न मना रहे हैं अपनी जिंदगी में उसके बारे में भी बात करेंगे। कमिंग अप राइट नेक्स्ट इज लंदन ठुमकदा। अगर आपको भी कोई गाना सुनना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, 9140-2323-4822 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। बिल्कुल यहाँ पे इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं, एंड आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एज वेल। दिस इज लंदन ठुमकदा फ्रॉम क्वीन। टेक इट अवे।

क्या हो गया है? कुछ तो हुआ है, अरे कुछ तो हुआ है इस खूबसूरत से मौसम को, और भी खूबसूरती निखर आ रही है, और जैसे एक मुस्कुराहट। पता है, कभी आपने ट्राई किया खुद से मुस्कुराना, खुद के लिए मुस्कुराना? जब कोई आपको नहीं देख रहा हो तब मुस्कुराना बहुत बार होता है, शायद आपको पता नहीं, क्योंकि आपके फोन देख के आप कभी कभी मुस्कुरा लेते हैं, और आपके परिवार में जो लोग होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि जब आप खुद से मुस्कुराते हैं ना, लोगों को परेशानी हो जाती है। जब कोई खुश होता है तो उन्हें वजह जानना है कि क्यों खुश है। भाई, खुशी के लिए कोई वजह होनी चाहिए क्या? आप बताओ। लेकिन मुझे लगता है कि किसी की बात सुनना बहुत ही खूबसूरत बात है, यानी लिसनिंग हैज टेकन इंटेंस प्लेस इन पीपल्स लाइव्स। अगर आप किसी की बात नहीं सुनते तो आप उनको अच्छा कैसे फील कराएंगे? सोचिए सोचिए, मैं ये गाना प्ले करती हूँ तब तक। इसका नाम है सुनो ना झंकार बीट्स, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज से ये वाला खूबसूरत गाना, इन शांस वॉइस, टेक इट अवे।

0: మీరు రిటైర్మెంట్ కి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు జీవితంలో ఏ దశలో ఉన్నప్పటికీ పదవీ విరమణ అనివార్యం. ప్రణాళికతో మీ భవిష్యత్తుకు ధీమా. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ వారి ఎన్పీఎస్ అనేది పిఎఫ్ఆర్డిఏచే నియంత్రించబడి పన్ను ఆదా చేసే మార్కెట్ తో అనుసంధానం కలిగిన ఉత్పత్తి. 400,000 కోట్లకు పైగా ఏయుఎం నిర్వహణ, పాన్ ఇండియా ఉనికితో దీర్ఘకాలిక వృద్ధి. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ తో పదవీ విరమణకు సిద్ధంగా ఉండండి. పెన్షన్ ఫండ్లు మరియు సెక్యూరిటీల్లోని అన్ని పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి.
1: रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है. अरे अगर कुछ ख़राब हो जाए उससे पहले ही अगर आप उसको रिपेयर करना शुरू करें तो यार मजबूती से बहुत साल टिके रहेगा. मैं बात कर रही हूँ किसी यू नो कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में नहीं, बल्कि आपके टिश्यूज़, मसल्स एंड ऑर्गन्स के बारे में. जी हाँ, हॉर्मोन्स को सपोर्ट करते हुए टिश्यूज़ और मसल्स को रिपेयर करने वाला होता है प्रोटीन. जी हाँ, और फैट्स प्रोवाइड कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी. ठीक है, वो तो है, लेकिन प्रोटीन गिव्स यू द हीलिंग पावर फॉर योर मसल्स एंड टिश्यूज़. कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, क्योंकि हम ना कार्ब्स खाते रहते हैं. अभी आपको डिफरेंस तो पता ही होगा प्रोटीन और कार्ब्स में, है ना. लेकिन प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मसल, स्किन, हेयर, नेल्स, इसके लिए. और मेटाबॉलिज्म प्रोटीन से भी बेटर होता है. एंड ऑफ कोर्स ये एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं आपके बॉडी में, जहां आपका हीमोग्लोबिन यू नो बेहतर होता है एंड यू नो कैरिंग ऑक्सीजन आल्सो गेट्स बेटर. एंड आप कभी ऑब्जर्व करो, जब आप प्रोटीन खाते हो ज़्यादातर तब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती. तो न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि प्राइमरी गोल प्रोटीन का होता है, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम्स का प्रोटीन आपको खाना चाहिए. मैं तो चना, स्प्राउट्स या सीड्स या नट्स, ये सारी चीज़ें खाती हूँ एज अ वेजिटेरियन फॉर माय प्रोटीन इनटेक. लेकिन चिकपी आल्सो इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन, या राजमा, ऑल दीज थिंग्स एज वेल. एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन उनके सोर्सेज भी है जो प्रोटीन के हैं. लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ प्रोटीन. इतने सारे ट्रैक्स कहाँ रखें, ऐप्स तो है ही इतने सारे फ़ोन में, वो भी ट्रैक करो, स्लीप भी ट्रैक करो, स्टेप्स भी ट्रैक करो. वेल, बेहतर बनना है तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे. बिल्कुल. और एक बहुत ही खूबसूरत गाना आ रहा है, ये दोस्ती वाला गाना है. दिस इज़ फ्रॉम दिल चाहता है एंड द सॉन्ग इज दिल चाहता है इटसेल्फ. टेक इट अवे. दिस इज़ आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ. आई एम जयश्री.

वेल वेलकम बैक। अभी आप सुनने वाले हैं स्टम्प्ड। स्टम्प्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्रिकेट की दुनिया में आपको ऐसे ले जाता है और क्रिकेट की दुनिया का झलक दिखाता है। इंटरव्यूज होते हैं। स्टम्प्ड इज मच अवेटेड प्रोग्राम। दिल्ली से रिले होगा विथ इंटरनेशनल एस्पेक्ट इज वेल, जो बीबीसी इंटरनेशनल से आप सुन सकते हैं। सो लेट्स लिसन टू स्टम्प्ड एंड स्टे ट्यून्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों

0: एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The inauguration of the new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Bilateral Investment Agreement, or BIA, between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The Finance Ministry said that the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The Ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tributes to Swami Vivekananda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Radhakrishnan described Swami Vivekananda as a great patriot, philosopher, and spiritual visionary.

सुना आपने? सुना सुना सुना? अरे मैंने भी सुना, सीटी वाला गाना है ये। वेल, सीटी बजाओ, यानी मुझे तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन नागेश सुर्वे जी 50 साल से सीटी बजा रहे हैं करीब करीब 1600 इंडियन फिल्म्स में। वेल वेलकम टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, जहां आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं हम, और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं द विजल मैन ऑफ बॉलीवुड को। ये जो गाना आपने सुना चांद सिफारिश फना फिल्म से, इसका जो विजल है ना, वो वाला

सेगमेंट नागेश सुर्वे जी ने गाया है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां इन्होंने सिर्फ इनका विजल जो है उससे गानों को और खूबसूरत बनाया, गानों को इतना निखारा। और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो मतलब बहुत ही फैंस थे इनके विजल के, और विजल से ये कैसे भी कौन सा भी सुर लगा लेते हैं। एंड नागेश सुर्वे जी एक एक्चुअली ट्रेंड वायलिनिस्ट है, और इनका सिलसिला ये विजल का कब शुरू हुआ ये सब जानते हैं। लेकिन और एक ऐसा गाना जो शायद ही आपको आइडिया ना हो कि इसमें विजल है ना, ये वाला गाना सुनिए। ये 90s का मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, अगर आप विजल में गाओगे उस तरफ रेडियो के उस पार तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि जो भी विजल करता है बहुत खुश होता है, जैसे पैरट्स है ना। वेल टेक दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग अवे, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

0: गौर फरमाया होगा आपने, बहुत सारे फिल्मों में विजिल होता है, बहुत सारे गानों में विजिल होता है। यार जब भी कोई विजिल करता है खुशी से करता है। नहीं, मैं वैसे वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो विजिल से तंग करते हैं दूसरे लोगों को। टीजिंग के बारे में नहीं, ईव टीजिंग के बारे में बिल्कुल नहीं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हैप्पी विजिल, दैट ब्यूटिफुल हैप्पी विजिल। तो नागेश सुर्वे जी थे एक वायलिनिस्ट, जी हाँ, और विजल मैन ऑफ बॉलीवुड कहलाने से पहले वो वायलिन बजाते थे फॉर म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री, हाँ। लेकिन एक बार वो ऐसे ही विजल कर रहे थे तो किसी ने सुन लिया एंड उन्होंने कहा चलिए आप ये गाने में क्यों नहीं डाल सकते। तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर से उनकी रिकमेंडेशन हुई एंड फिर देर वॉज नो लुकिंग बैक। पता है कब शुरू किया उन्होंने ये विजल का सिलसिला? जूली फिल्म से, हाँ जी, जूली फिल्म से ये विजिल का सिलसिला शुरू हुआ एंड बस चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, अब क्या बताएं। एंड यस, अभी और एक खूबसूरत गाना सुनाने वाली हूँ मैं, विजिल मैन ऑफ बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं हम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ। स्टे ट्यून्ड, एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंगड़ी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई,
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
1: इट्स नॉट जस्ट फूड,
2: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
1: जश्न-ए-हैदराबाद।

बॉलीवुड की बात ही ऐसी है, दो दो गाने एक ही नाम से दिल क्या करे, तो गलती से मिस्टेक हो गया। मैं बजाना चाह रही थी दिल क्या करे किशोर दा की आवाज़ में, जूली फिल्म से, जहां विजल मैन अपना जादू बिखरे थे। एंड यस, ये दिल क्या करे सलाम इश्क से प्ले हो गया, सेम नाम है, क्या ही करे, है ना। लेकिन दिस इज एन अमेजिंग सॉन्ग इंडीड, आई मीन अदनान सामी जस्ट किल्ड इट इंडीड। चलिए सुनते हैं अभी वो वाला गाना जो मैं प्ले करना चाह रही थी, जिसके बारे में मैंने बात किया। दिस इज दिल क्या करे फ्रॉम द फिल्म जूली। जरा विजल पे गौर फरमाइए जनाब, क्योंकि ये विजल गाया है विजल मैन ऑफ बॉलीवुड ने, नागेश जी ने।

सुना सुना सुना आपने, कितना खूबसूरत विजल इंडीड। जैसे ऐसे लग रहा ही नहीं है कि उन्होंने तो इतना एफर्ट डाला, ऐसे एवे जैसे मक्खन जैसा, है ना। वेल इतने ही गाने नहीं, और भी ढेर सारे गाने हैं जहाँ विजल का उपयोग किया गया है बाय म्यूजिक डायरेक्टर्स, और स्पेशली हमारे विजल मैन ऑफ बॉलीवुड नागेश जी। बिल्कुल, उन्होंने 1600 गानों में विजल। और आपको याद है, कुछ कुछ होता है मैं भी, ये लड़की है दीवाना, ये लड़का है दीवाना और ये लड़की है दीवानी, वो वाले गाने में विजल भी यूज़ किया गया था। लेकिन द वेरी फैसिनेटिंग थिंग इज धूम अगेन, ऋतिक रोशन का डांस एंड दैट मूव। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं गाना प्ले करती हूँ, टेक इट अवे, दिस इज धूम अगेन। एंड वेल, वी टॉकिंग अबाउट द विजल मैन ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर नागेश सुरवे।

देख लो ये दिल जहाँ था ये वही है क्या? अरे बिल्कुल, कैसे हो सकता है, क्योंकि दिल दे बैठे हैं हम। वक्त की पाबंदी है इसलिए और भी गाने प्ले नहीं कर सकती, लेकिन हमारा एक टुकड़ा दिल का इन गानों में बस गया है। इतनी सारी गाने हैं जो विजल के विजल को उपयोग करते हैं बॉलीवुड में, एंड विजल मैन ऑफ बॉलीवुड नागेश सुरवे जी के बारे में इतनी सारी बातें की हमने, एंड आज भी वो उनका लेगेसी कंटिन्यू हो रहा है। उनकी बेटी, जी हाँ, वो भी श्वेता सुरेश, वो भी विजलिंग क्वीन जानी जाती है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि क्लासिकल म्यूजिक में भी विजलिंग होता है, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में। पता है आपको, कोमरवोलू शिव प्रसाद गारू इज द इंडियाज फर्स्ट प्रोफेशनल विजलिंग आर्टिस्ट। एंड कंटेप्रेरी क्लासिकल म्यूजिक में भी मैंने बताया कि श्वेता सुरेश, शी इज अ वर्ल्ड रेनाउंड विजलिंग क्वीन। एंड यस, वीव स्पोकन सो मच। एंड रूपाली सुरवे जी इज नागेश सुरवे जी इज डॉटर, एंड शी इज कैरिंग फॉरवर्ड हिज म्यूजिकल लेगेसी एज वेल। इतने सारे खूबसूरत गाने सुन लिए हैं, जी हाँ।

और भारी तो ढेर सारी बातें हैं, करेंगे सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 बजे, बस 3 मिनट में। यहाँ बातें मेरी कम आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि दिस इज़ आर लाइव फोन इन प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड एज हेलो रेनबो, एंड आर लिसनर्स विल बी कॉलिंग अस ऑन आर 3 मैजिकल नंबर्स। मैजिकल नंबर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे मेरा एक लाइट आता है मेरे फ़ोन में, जो नंबर्स बिल्कुल नहीं आते, तो मेरे पास चॉइस नहीं है किसका नंबर रिसीव करें किसका नहीं। नो कॉलर आईडी, बट आई जस्ट सी अ मैजिकल लाइट ब्लिंकिंग एंड आई विल रिसीव योर कॉल्स। हमारे नंबर्स है 2323-0030, 2323-4821, 2970-4715। एक ऐसा टॉपिक बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपको याद आ जाएंगी, और आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे फ़ोन लगने का और मेरे साथ वो सारी बातें शेयर करने का। सो यप, हेलो रेनबो, विल वेट फॉर दिस ब्यूटीफुल शो। दिस इज़ आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ। दिस इज़ वन ब्यूटीफुल सॉन्ग वेर वी कैन स्लिप इन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, खूबसूरती के साथ और डिविनिटी के साथ। दिस इज़ ख्वाजा मेरे ख्वाजा AR रहमान साहब की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म जोधा अकबर। टेक इट अवे।

किसी दोस्त का नंबर याद हो ना हो, हमारे नंबर्स यानी रेनबो एफएम के आरजेस के नंबर्स तो आपको याद रहेंगे ही। 2323-0030, 2323-4821 या फिर 2970-4715। बहुत मौसम सुहाना है, हंसी है, लेकिन ना मतलब गौर फरमाते हैं हम कुछ चीज़ों पर। देखिए ना, अगर इतना बड़ा फिल्म हम देखते हैं, कहते हैं मस्त है फिल्म, गाने बढ़िया है, लेकिन एक ऐसा एकाध सीन हमें ना बहुत इफ़ेक्ट करता है, हमें याद रह जाता है। शायद थिएटर में ही तालियां बजाना शुरू कर देते थे हम जब वो सीन हमारे दिल तक पहुंच गया हो। ऐसे कौन से वाले सीन्स हैं? मुझे तो बहुत सारे याद आ रहे हैं, जैसे लगान फिल्म में द लास्ट बॉल, जहाँ जीतना था आमिर खान को, 3 गुना लगान पीछे से सुनाई देता है, एंड दैट मोमेंट, दैट मोमेंट।

0: और
1: ये तो मेरे को
0: ऐसे
1: भी
0: ही
1: याद
0: पहले,
1: है।
0: और नाना पाटेकर का क्रांतिवीर में
1: हाँ
0: ऊपर वाले को भी शर्म आती होगी, उसने बहुत सी बेहतरीन चीज बनाई थी, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े देखो
1: कीड़े
0: और मरो, ऐसा
1: जी
0: ऐसे डायलॉग बहुत। और जो पिक्चर जब ऐसा पर्दे पे जब बेहतरीन डायलॉग होते थे, जो 54 58 ऐसा गिरते थे, बहुत
1: अच्छा थिएटर
0: बेहतरीन।
1: मतलब स्क्रीन के ऊपर पैसे फेंकते थे क्या?
0: स्क्रीन के ऊपर नहीं, पब्लिक के ऊपर, पीछे बालकनी वाले फेंकते थे। और
1: दैट्स
0: जाते
1: नाइस।
0: हाँ, और जो पर्दे के सामने है वो कागज के बारीक टुकड़े करके सब उछालते
1: हाँ
0: थे, तो
1: वो
0: पूरा पर्दे
1: उछालते
0: पे
1: थे।
0: रील
1: हाँ
0: गिरते थे,
1: हाँ मतलब मेरे
0: बहुत
1: को ना
0: जी।
1: सर्वरली साहब एक बार जिंदगी में तो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोई भी एक फिल्म देखना है, अभी तक नहीं हुआ वो। मेरे को देखना है कैसे अच्छे थिएटर में, मतलब अपना नॉर्मल अपने थिएटर्स रहते हैं ना आरटीसी क्रॉस रोड्स में, वहाँ यहाँ वहाँ पे जाके
0: हाँ,
1: देखना मेरे को।
0: मैं तो मैडम पुलिस वालों के, हम तो मार खा के भी घुस के, एक बार लाइन में घुस गए तो टिकट लेके निकलना, नहीं तो वापस निकल ही नहीं सकते थे, कुछ
1: जी जी
0: भी हो
1: जी
0: जाए लेके निकलना, नहीं तो पसीना। बाद वक्त ऐसा भी होता था, जुमा के दिन नमाज जेब में टिकट रहती थी, नमाज पढ़ के पिक्चर देखते थे 2:30 बजे से जाके,
1: जी जी जी
0: ऐसा भी
1: जी
0: बहुत से वाक्य है। और संडे के दिन तो 4 शो बराबर देख के आते थे, एक नहीं तो एक पुलिस रिटेटर,
1: 4 शो एक दिन
0: जी
1: में
0: हाँ 4 शो बराबर 100% देख के आते थे, और साइकिल पे जाके घुमाल के मस्त आराम से, बहुत एंजॉय, बहुत मजा आता था, बहुत बड़ी बात थी मैडम।
1: है ना?
0: पहले वो दौर में एंटरटेनमेंट के दो ही चीजें थी, घर में रहे तो रेडियो देखना है, नहीं तो बाहर पिक्चर देखना, बस दूसरा कुछ ही नहीं था जब, ऐसा वो बहुत बड़ी बात थी। ऐसा तो आप जो बोल रहे, बहुत बड़ी चीज है पिक्चर, आज बहुत आसान होगा, फोन पे बोलते आ जाता, लेकिन जो बड़े पर्दे पे देखने का मजा आता ना, रामकृष्णा 70 mm में शोले
1: जी जी
0: पिक्चर में
1: जी
0: बताया था तो इतना मजा, ऐसा दिखता था कि घोड़े अपने ऊपर आके गिर जा रहे बोले, ऐसा
1: इसलिए री रिलीज कर रहे हैं ना फिल्मों को अभी।
0: हाँ। तारीख अपने बोले, घड़ी का कांटा घूम के फिर वही आता, फिर पुरानी चीज फिर रिपीट होती थी क्या,
1: रिपीट होती।
0: आने
1: हाँ
0: वाले वक्तों में घूम के आएंगा फिर वक्त,
1: जैसे हमारा
0: ऐसा।
1: रेडियो हमेशा एवरग्रीन है
0: हाँ,
1: वैसे ही।
0: और मैं भी रेडियो जो आपका है ना, मेरे को तो आपके सुनील दास साहब बहुत याद आते हैं, कैसे सुनील दास साहब होते हैं
1: मस्त
0: ना,
1: है सब। हाँ सब
0: हाँ क्यों
1: मतलब
0: बोले तो
1: हम बात बात होती रहती है हमारी, सारे आरजे से हमारे मीटिंग्स रहते हैं, हम मिलते रहते हैं। ठीक
0: क्यों
1: है
0: बोले
1: वो।
0: तो संडे के दिन सुबह में जो बोलते थे, मैं हूँ आपका दिलदार दोस्त सुनील दत्त, जो बोलते
1: हाँ
0: थे
1: डेक्कनी हिंदी में
0: 2009
1: बात
0: से मैं
1: करते हैं वो।
0: बराबर आज, जी हाँ
1: जी
0: दक्षिणी भाषा जो अच्छी बात करते थे।
1: जी जी
0: अब एक गाने की रिक्वेस्ट थी अगर आप सुना है
1: बोलिए
0: तो,
1: बोलिए।
0: ये मूवी का नाम है विधाता,
1: अच्छा
0: सात सहेलियां खड़ी खड़ी फरिया सुनाए घड़ी घड़ी।
1: मेरे को 10 मिनट लगता आपके पूरे रिक्वेस्ट ढूंढने
0: अच्छी बात है, मगर सुनाइए जरूर,
1: में
0: आप भी सुनिए वो
1: बिल्कुल।
0: गाना, कितना एंटरटेनमेंट है, आप हंसेंगे आप वो गाना सुने तो। थैंक
1: चलिए कोशिश करती हूँ मैं वो
0: यू,
1: प्ले
0: बहुत
1: करने के
0: बहुत
1: लिए।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया सरवली साहब। ऑलराइट, वी हैव अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म मन्ना डे जी की आवाज़ में। ये दोस्ती शोले फिल्म से, क्योंकि शोले की बात हुई है एंड शोले के आइकॉनिक, मतलब रह नहीं दीजिए। हाँ आपको ज़्यादा पता है मेरे से आइकॉनिक सीन्स एक से बढ़ के एक। जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको वो सीन्स ऐसे नज़र आ रहे होंगे। यही है रेडियो का पावर, द पावर ऑफ वर्ड्स, बातों का जो पावर होता है। और ये शो है जहाँ आपकी बातें होंगी, मेरी कम आपकी ज़्यादा। चलिए सुनते हैं दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी विल गेट बैक टू आर कॉल्स। वेल एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट इज ये दोस्ती। स्टे ट्यून्ड।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
3: ఏది మామా తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్ కు పట్టుకొచ్చినావు.
4: వింటేజ్ బార్స్ అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కా కాట్ మస్త్ ఉంటది.
3: అదేంది మామా నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
4: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
3: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు? ఇవన్నీ
4: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.

0: घड़ी घड़ी
1: सुपर लकब्बा परफेक्ट टीवी दो।
2: खूबसूरत नए नए गाने हमें ऐसी परिचय कराते हैं हमारे कॉलर्स। बिल्कुल, एंड दिस इज सात सहेलियां खड़ी खड़ी विधाता फिल्म से। थैंक यू सरवर अली साहब। और हमारे कॉलर्स, देखते हैं कौन सा सीन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हेलो रेनबो।
3: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून, आदाब, जय श्री जी।
2: आदाब आदाब आदाब, कैसे हैं शेर खान साहब?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है, और आप भी खैरियत से होंगे और हमेशा खैरियत से रहना।
2: मस्त
3: सभी भाई बहनों को, सुनने वालों को सलाम है मेरा, आदाब है। बस अल्लाह सब खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे हमेशा।
2: जी जी जी, कौन सा वो सीन है जो शायद आपको ऐसे याद रह गया हो? आई नो कि आप फिल्में ज्यादा नहीं देखे होंगे, लेकिन आप सुनते थे ना फिल्में?
3: हाँ, बचपन से फिल्में सुने और सुनने देखने से ज्यादा मजा आए वाला है, मतलब एंजॉय हुए वाला है
2: जी।
3: तो बहुत सारे हैं, वैसे बोलने बैठे तो
2: कोई एक
3: पड़
2: दो,
3: क्योंकि हर एक सीन, हर एक फिल्म, जो पुराने फिल्म थे बहुत सारे हैं। वैसे ही एक फिल्म है आनंद, राजेश खन्ना,
2: आनंद जी जी जी, हाँ
3: जी। बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं
2: जी।
3: और वो जो आखिरी का सीन होता है, जो राजेश खन्ना साहब जो वो उसमें किरदार किए, पूरे बीमारी से जो जूझते हैं, और आखिरी में जो डायलॉग बोलते बोलते उनका देहांत होता है, उनके किरदार का, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां
2: हैं। राइट
3: जी जी,
2: ब्यूटीफुल।
3: सुनते वो बहुत बेहतरीन फिल्म भी है और बेहतरीन सीन है उसमें का भी
2: जी।
3: और अमिताभ साहब का एक डायलॉग है कुली फिल्म में, जब उनपे विलन बंदूक तानता है तो कहते हैं, चला तेरे हाथों में बंदूक है तो मेरे सीने में भी अल्लाह का नाम है, देखते है तो तू मारने वाला है या बचाने वाला, बड़ा
2: बचाने
3: है डायलॉग बोलते हैं तो
2: जी, जी,
3: उन पे गोलियां भी चलती है, फिर थोड़ा इलाज होता है और फिर ठीक भी हो जाते हैं वो, यानी अल्लाह का नाम लेके बताते हैं तो। जैसे और दिलवाले दुल्हनिया का आखिरी का सीन याद रहता है,
2: क्लाइमैक्स सीन,
3: बहुत सारी पूरी फिल्म लव स्टोरी में गुजरती है। फिर जब अमरीश पुरी साहब, जब वो सब फाइटिंग वगैरह सब होने के बाद शाहरुख साहब और उनके पिता अनुपम खेर जब ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो जब अमरीश पुरी साहब बोलते हैं, सिमरन जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, इस लड़के से ज्यादा कोई प्यार नहीं करने वाला है। आगे वो
2: आप
3: से
2: बिना
3: ट्रेन में
2: फिल्म देखे ही, बिना सीन देखे ही आपके जहन में आप एक अलग सा ही एक सीन क्रिएट करते थे शायद, है ना?
3: जी जी जी जी, तो बचपन में होता ही होता है, 4 साल की उम्र में ब्लाइंड होने के बाद, फिर जब रोता डरता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दौर शुरू हुआ, तो जब पापा घर में टीवी लाए थे और एक हफ्ते को हफ्ता एक फिल्म आती थी, तो बस चेयर कुर्सी लगा के बैठ जाते थे और मुझे सब समझ जाते थे, ये फिल्म है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है। बाद में होते होते सब समझ में आ गया, तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पुराने फिल्म बहुत इंजॉय किया।
2: आप आवाज से ही कैरेक्टर्स पहचान लेते थे शायद, नहीं?
3: हाँ, आवाज से सारे जो मोहल्ले के लोग हैं तो मुझे आके पूछते थे, आज कौन सी फिल्म है और कौन हीरो है, मैं सबको बता दूंगा, किसको भी कुछ पूछना है तो मेरे पास आके बोलते थे, चलो बोलते थे ये हमारा ये वो, इनको जाके पूछेंगे, ये सब कुछ बता देते बोलते थे।
2: और
3: हीरो हीरोइन की आवाज सुन के भी बहुत सारे फिल्मों में, जब मैं घर वाले या बाहर वालों के सामने बोलता था, कहीं फिल्म चलती थी तो मैं पहले ही बता देता ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो सब लोग हैरान हो जाते थे।
2: थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, थैंक यू सो मच
3: जी जी। और जय श्री जी, गाने की रिक्वेस्ट है,
2: बोलिए
3: तो प्ले कर दीजिए।
2: बोलिए,
3: सच्चा झूठा फिल्म, राजेश खन्ना साहब का टाइटल सॉन्ग, दिल को देखो चेहरा ना देखो।
2: ओके ठीक है, मैं ढूंढती हूँ।
3: ओके शुक्रिया, आप वक्त दिए, अल्लाह
2: अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, हेलो रेनबो। ओके ठीक है ठीक है, एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड। दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ। एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।

0: तो ऐसा हुआ पहली दफा जब हम थिएटर में फिल्म देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे सीन्स जो है वो दिल को छू जाते हैं। कभी कभी हम इतने एक्साइटेड होते हैं वहीं का वहीं हम क्लैप करने लगते हैं। और हाल ही में ऐसे फिल्में थोड़े कम ही हैं जहाँ सीन्स को हम याद करते हैं, जहाँ वो लाइक वो जहन में हमारे बैठ जाते हैं रेंट फ्री, है ना। तो ऐसे ही टॉपिक हमने बात किया एंड मज़ा आ गया यार आज। सीरियसली इंटरनेशनल कोऑपरेटर्स डे ऑफ कोर्स एंड वन महोत्सव हमने सेलिब्रेट किया राइट हियर राइट नाउ एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने ऑफ कोर्स वेस्टर्न सॉन्ग्स, ऐसे गानों का सिलसिला बातों की जुगलबंदी जारी थी। अभी वक्त है मेरा टटा बाय कहने का। अपना ख्याल रखिएगा, बारिश होने की सूचना है, बहुत ज़्यादा बारिश, तेज़ बारिश 2 दिन के लिए। तो हाँ, बस चेतावनी दे रहे हैं, आपको पता है समझदार को इशारा काफ़ी है ना। इसके अलावा जब बारिश होती है तो कम्युनिटी एनिमल्स को शेल्टर नहीं होता। अगर आप अपना घर का गेट खोल दें या उनको थोड़ा स्पेस दे दें अपने पार्किंग लॉट में ऐसे कुछ, तो जब तक बारिश कम हो जाएगी वो वहाँ बैठ के फिर निकल जाएंगे। बी काइंड टू एनिमल्स इज ऑल आई वांट टू से। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन एंड दिस इज जयश्री साइनिंग ऑफ।
1: Hey, very hungry. What's special today?
2: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
3: More than food, it's the stories behind the recipes. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
1: And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
3: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
4: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मशाले हो, जल

इसलिए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि ज़िंदगी का दारोमदार इंसान की सोच पर मुनहसिर है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, कौमों की हयात इनके तखय्युल पे है मौकूफ़, यानि ज़िंदगी उलझनों में उलझा हुआ एक सिलसिला है, बेसवी बेकसी घुटन मजबूरी और खौफ व हिरास में ये सभी उसके पड़ाव हैं।

0: करने से हमने ज़िंदगी के अंधेरे को दूर कर दिया, ठीक वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी के अंधेरे को रोशनी दे सकते हैं। ज़िंदगी का सिलसिला सही है तो फिर इसे सुधरने में देर नहीं लगती। दरअसल तीन लफ्ज़ों के इस जुमले में ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा है, यानि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग अपने गर्दिश के दिनों में सभी अपनों को अच्छी तरह से परख चुके होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा होता है। बग़ैर किसी के सहारे वो भले ही धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं, मगर अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेते हैं। ये माना ज़िंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं दोस्तों चार दिन भी।
1: हर्विता बिंदा, अभी आप सुन रहे थे एमए हाई से।

भुलाई नहीं भूलते के साथ साथ हम कुछ बातें भी करेंगे। चलिए आज यानी मौसम भी खुशगवार है और कुछ बातें मौसम को लेकर भी की जाएंगी। मौसम के साथ साथ हम बात करते हैं रिश्तों की कि रिश्तों को हमें निभाना पड़ता है, चाहे कोई भी रिश्ते हों, चाहे यानी माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे औलाद का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, या फिर यानी मियाँ बीवी का रिश्ता हो। सब रिश्तों को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। हर रिश्ता वक्त और अपनी यानी तवज्जो मांगता है। बिना तवज्जो के कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता कि वो यानी उसमें उसी तरीके का खलूस कायम रहता है। अगर हम वक्त ना दें तो सभी यानी रिश्ते मुरझा जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम पेड़ पौधों को वक्त पर यानी उनके ग़िज़ा और उन पानी ना दें तो जिस तरीके से वो मुरझा जाते हैं, उसी तरह रिश्तों का भी हाल होता है। तो हमें हर रिश्तों को निभाना पड़ता है। हर रिश्तों को निभाने के लिए, उसकी मज़बूती के लिए उन्हें कुछ वक्त देना पड़ता है। ये नहीं सोचना है कि हमें यानी कोई भी उम्र हो, चाहे कोई भी उम्र हो, वक्त के साथ साथ यानी फीकी होती हुई मोहब्बत को फिर से ज़िंदा करना पड़ता है। उसके लिए हम खुशगवार मौसम का सहारा लेना चाहिए और एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की यानी एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातों को बांटना चाहिए। एक दूसरे के यानी जो भी उनमें उलझन है उसको बांट के दूर करना चाहिए। उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए और एक दूसरे को वक्त देना चाहिए।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए अब सुनते हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम यानी भुलाए नहीं भूलते। हाँ, भुलाए नहीं भूलते, ये ऐसे गीत हम इस प्रोग्राम में सुनते हैं जो कभी हम भूल नहीं पाते। यानी ये सॉन्ग्स जो हैं सबके मनपसंद सॉन्ग्स हैं, और हर जनरेशन के, ऐसा नहीं कि वही जनरेशन के, हर जनरेशन के मनपसंद सॉन्ग्स यही रहे हैं, और इसे तो कोई भी भूल नहीं पाएगा। आने वाले सदियों में भी ये सॉन्ग्स यानी ये गीत चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी है। ये इतने मधुर होते हैं, इसके बोल इतने यानी बहुत ज़्यादा ही मीनिंगफुल होते हैं।

हाँ, बरखा बहार आई तो अपनों की याद आती है और अपनों के साथ वक्त गुजारने को जी करता है। तो इसी तरीके की जिसमें बात कर रही थी कि रिश्तों की, तो इसी मौजू पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, कहानी सुनेंगे छोटी सी। शहर में बादलों की हल्की चादर तनी हुई थी, ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से खेलती हुई गुजर रही थी और कहीं कहीं हल्की हल्की फुहार जमीन को मोहब्बत से चूम रही थी। फिजा में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू घुली हुई थी, जैसे कुदरत ने हर तरफ मोहब्बत का रंग बिखेर दिया हो। ऐसे में खिड़की के पास खड़ी साइमा कुछ सोच रही थी। वो यानी खामोश मिजाज एक घरेलू खातून थी जो अपने काम की उलझनों में रोजाना अपने काम में उलझी रहती। वो अपनी फैमिली के लिए यानी अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना, अपने यानी अपने खाविन, अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए सब कुछ करने में उलझी रहती थी। उसे वक्त यानी मौसम का एहसास करने के लिए, उसे अपने आप को तलाश करने के लिए, या यानी उसके अपने खाविन के साथ वक्त गुजारने के लिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तो वो यानी ये देखकर, खिड़की से देखकर वो चंद लम्हों के लिए वो भी खुशी महसूस कर रही थी। जो मौसम का नज़ारा जो देख रही थी, वो देखकर उसके दिल में भी उमंगें जाग रही थी।

समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। तो बात कर रही थी मैं शाइमा की, जो खिड़की के पास खड़ी खामोशी से बारिश को देख रही थी और वो हर यानी गिरते बूंदों को महसूस कर रही थी और उसे दिल में खुशी महसूस हो रही थी। इसका दिल यानी इसके बस में नहीं था, मौसम की दिलकशी में खोया हुआ था। अचानक से इसका मोबाइल बजा, क्या बाहर चले? स्क्रीन पर शहजान का मुख्तसर सा पैगाम था। अपने शोहर का जैसा ही मैसेज उसने देखा तो उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इतने खूबसूरत मौसम को कमरे में गुजारना तो नाइंसाफी होगी, उसने सोचा। कुछ देर ही बाद दोनों ने कहीं दूर जाने का फैसला किया और दोनों निकल पड़े कहीं सैर करने, यानी अच्छे मौसम में एक दूसरे को वक्त देने के लिए वो बाहर निकल पड़े।

कुछ देर बाद दोनों एक यानी खूबसूरत सी जगह, खूबसूरत से बाग में चले गए जहाँ शाम का वक्त था। दरख्त बारिश से धुलकर और भी सरसब्ज दिखाई दे रहे थे। फूलों पर पानी के खतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे और दोनों का चेहरा खुशी से चमचमा रहा था। यानी ये सब नज़ारे उनके दिलों में तभी यानी तभी कुछ काम के लग रहे थे, तभी अच्छे लग रहे थे जब दोनों साथ थे, जब दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे थे, तभी उन्हें ये सब बहुत यानी हसीन नज़ारा और हसीन लग रहा था। उन्हें लगता था कि आज पूरा मौसम उनके इस्तेमाल के लिए सजाया गया है। तभी यानी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और ऐसा लग रहा था कि दोनों पहली बार ही मिले हों।

रिमा ने हल्की सी शरारत की और कहा कि जब कहा कि शायद ये मौसम भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। फिर दोनों कुछ बातें करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बाग की पगडंडी पर चलने लगी। ठंडी हवा इनके चेहरों को छू कर गुजर रही थी। न ज़्यादा बातें थी ना कोई शोर, सिर्फ खामोशी थी जो इनके दिलों की ज़ुबान बन चुकी थी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुलाए नहीं भूलते 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हम बात कर रहे थे दोनों की, जिन्होंने बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को अपना वक्त दिया था। दोनों इसी तरीके से घूम रहे थे, यानी ढल सूरज ढल रहा था और यानी दोनों साथ साथ चल रहे थे। वहाँ जब वो पगडंडी पर चल रहे थे तो कुछ फासले पर एक छोटी सी झील थी। बारिश के कतरे पानी से गिर गिर कर नन्हे नन्हे दायरे बना रहे थे। दोनों झील के किनारे रुक गए और उसी झील को गौर से देखने लगे और कुछ सोचने लगे। तुम्हें मालूम है, उसने अपनी यानी शाइमा से कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि खूबसूरत मौसम सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर आज एहसास हुआ कि मौसम इस वक्त खूबसूरत बनता है जब साथ अपना कोई हो और साथ वक्त गुजारे। तभी शाइमा ने नज़रें झुका ली। इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई, जैसे पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की हो। ये बातें इस तरीके से रिश्तों को जोड़े रखने के लिए, वक्त गुजारने के लिए कोई भी मौका हमें निकालना होता है, हमें कोई मौका ढूंढना होता है, तभी कहीं जाकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे।

हाँ, तो वो दोनों इस तरीके से यानी बातें करते रहे एक दूसरे से। और तभी साहिल ने कहा शाइमा से कि अगर इस वक्त कोई एक यानी बोल दे कि चलो हम बारिश में भीगते हैं और मजबूर करे, तो फिर तब हम क्या करेंगे। तब शाइमा ने कहा कि फिर ऐसा होगा कि मौसम जिंदगी फिर से भर देगा। इतने में बारिश कुछ तेज हो गई, दोनों एक

बड़े बरगद के दरख्त के नीचे इकट्ठे हुए। हवा के झोंके कभी बारिश के खतरे इनके चेहरों तक ले आते और कभी शायमा की जुल्फों को भी घेर देते। साहिल ने एक छोटा सा रुमाल अपने जेब से निकाला और मुस्कुराते हुए उसकी इजाजत लिए बगैर, यानी गाल से पानी हटाने लगा, गाल पोंछने लगा। तब वो शर्माने लगी, तब वो कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हम पहली बार मिले हैं। और तभी उसने, यानी बारिश के खतरे शायद तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे थे, जब साहिल ने उनसे कहा, तब शाइमा की आंखों में खुशी की चमक उतर आई और वो कहने लगी कि हाँ, और तुम हर बार इनसे मुकाबला करने आ जाते हो। ऐसी बातों पर दोनों बेख्तियार हंसने लगे।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो और बात करते हैं साहिल और शाइमा की। बारिश कुछ थम सी गई थी, मगरिब के करीब सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा, आसमान पर सुनहरी और गुलाबी रंग बिखर गए, हल्का सा कौस खजा भी नमोदार हो गया। देखो, साइमा ने खुशी से आसमान की तरफ इशारा किया। साहिल ने आसमान के बजाय साइमा को देखा और कहने लगा कि मैं तो पहले ही दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर देख रहा हूँ। ये सुनते ही यानी वो शर्मा गई और अपनी पलकें उसने नीची कर ली। उसकी धड़कन जैसे मौसम की मौसीकी के साथ हम आहंग हो गई। चलते चलते वो दोनों एक चाय के छोटे से स्टॉल पर पहुंच गए। मिट्टी के कपों में गरम गरम चाय, साथ में पकौड़ों की खुशबू और ठंडी हवा। ये लम्हा खत्म न हो, साइमा ने आहिस्ता से कहा।

हाँ, तो उम्मीद है कि आप इतने सुरीले नगमे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तब यानी साहिल ने कहा कि हमें घर भी जाना है। तब शाइमा ने कहा कि हाँ, वो तो पता है, लेकिन ये लम्हे मेरे लिए बहुत ही यादगार लम्हे हैं। बहुत कई सालों के बाद ऐसा लगता है कि मैंने फिर से दोबारा ज़िंदगी जी है। ये बातें करते करते उनकी चाय ख़त्म हुई और शाम ढलने लगी। बाग की रोशनियां जल उठी। बारिश के खतरों से भीगे हुए दरख्त जुगनू की तरह चमक रहे थे। वापसी के वक्त दोनों खामोश थे, मगर इनकी खामोशी में हजारों बातें छुपी हुई थी।

और तब यानी चलते चलते साहिल ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुक गया वो वहां पर, और कहने लगा कि अगर हर वक्त हर मौसम हम इसी तरीके से कुछ देर के लिए बाहर आए और कुछ देर हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ गुजारे तो कितना अच्छा लगता है ना। तब शायमा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इतने यानी जिंदगी की उलझनों में सभी कामों में उलझ कर ये पता ही नहीं चला कि इस तरीके से भी जिंदगी जी जाती है और इस तरीके से हमें अपने लिए वक्त देना कितना ज़रूरी होता है। तो ये सब बातें सुनकर यानी साहिल को भी एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे को वक्त दें और हम एक दूसरे को यानी ये ना सोचे कि अब यानी अब हमारी उम्र नहीं है, अब हमें अब हम क्यों घूमें फिरें, अब हमारी घूमने फिरने की उम्र नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि कोई भी इसमें उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। कहते हैं ना कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो इस तरीके से वो यानी जब दिलों में खुलूस होता है, मोहब्बत होती है, तो एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ही यादगार बन जाता है।

तो इस तरह से साहिल और शाइमा दोनों हंसते खेलते यानी जिंदगी के लम्हात दोबारा जीते हुए अपने घर वापस लौट गए। जब भी ऐसी शाम आती तो उनके दिलों में ये यादें ताज़ा हो जाती और वो फिर से अपने एक दूसरे के साथ वक्त दिया करते। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि कभी भी जब भी उन्हें वक्त मिलता वो एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारा करते, जिससे उनके रिश्ते में फिर से दोबारा ताजगी आ जाती।

0: हम गम तेरे और दिल पर जानिए।
1: इसी नगमे के साथ आपका मनपसंद प्रोग्राम यानी भुलाए नहीं भूलते प्रोग्राम अब ख़त्म करने की इजाज़त हमें दीजिए, क्योंकि वक्त हमसे कह रहा है कि अब हमें लौटना चाहिए। चलिए चलते चलते हम आपको सुनाते हैं पयाम-ए-शब, पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। हर सच बात हर जगह और हर शख्स के सामने बयान करना फायदेमंद नहीं होता। आज का पैगाम ये है कि इंसान को अपने जज्बात और राज हर किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। अपने दिल की बात ऐसे लोगों से कहनी चाहिए जो इखलास, समझदारी और हमदर्दी रखते हों। साथ ही ये सबक भी मिलता है कि अगर लोगों से तवक्कयात बहुत ज़्यादा वाबिस्ता कर ली जाएं, तो मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। अपने दिल की बात सोच समझ कर और अहले दिल लोगों के सामने बयान करो। हर शख्स तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं जानता, इसीलिए एतमाद भी एहतियात के साथ करो और अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करो। खुलूस एक कीमती दौलत है, लेकिन खुलूस का इजहार वहाँ करना चाहिए जहाँ उसकी कदर हो। तवक्कयात कम और किरदार बुलंद रखो तो दिल के जख्म भी कम लगेंगे।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्स पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं और कुछ देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य

0: Welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481. And 2371-7106. And of course, do not forget to prefix the Delhi code 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phones. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर हम नजर डालेंगे. आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर 2331-0481 और तीसरा नंबर 2371-7106. और दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. हम श्रोता आपको बता दें, किसी भी स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे. और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर क्या स्टूडियो हमारे साथ हैं विशेष हमारे मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद. नमस्कार.
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस.
0: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%. And monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी केंद्र का उद्घाटन किया. घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गुजरात के साणंद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तैयार की गई ये फैसिलिटी देश की टेक मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक अहम पड़ाव है। साणंद पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाईटेक प्लांट का दौरा किया और प्रोडक्शन प्रोसेस का जायजा लिया। पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर इस फैसिलिटी से सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

0: And Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for several development projects worth over 1 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. And in the meanwhile, we are joined in by our first caller, B.R. Nath from Delhi. Mr. Nath, welcome to the show.
1: जी नमस्कार सवाल
2: नमस्कार देखिए आज एक एक्सपर्ट से पूछना नमस्कार एक्सपर्ट और आपको भी ये जो क्या नाम TDS और AIS बने 30 जून तक अपडेट नहीं हुआ एक भी कुछ रह जाता है दूसरा प्रॉब्लम ये बायबैक जो किया था इंफोसिस का दिसंबर में उसको लोग डिविडेंड भी दिखाते हैं और बायबैक भी दिखाते हैं ये AIS में और TIS क्या नाम इसमें TIS में ये एनोमली क्यों है
1: देखिए ये आयकर विभाग ने अब जो आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से 7 तक वो किए गए हैं और ITR 1 और 2 जो है वो 31 जुलाई तक और ITR 3 और 4 जो है वो 31 अगस्त तक भरे जा सकते हैं आपका जो दो मूल सवाल है कि ये अंतर क्यों है अगर अंतर आपको नजर आता है तो आप आयकर विभाग से तुरंत उसका प्रश्न पूछें उस पे आपकी दोनों की सहमति जैसे आपने कहा TIS है और AIS है तो AIS में आपने देखा होगा कि जब आपके पास वो आता है कंप्लीट डिटेल उसमें ये भी होता है कि एक असेसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या किया अगर असेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है उसको तो अगर कोई अंतर है तो कृपया करके आयकर विभाग से अविलंब संपर्क करें समय चूंकि कम है रिटर्न दाखिल करने में काफ़ी कम समय तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ समय थोड़ा कम बचा हुआ है तो उस हिसाब से आप तुरंत उनसे करें जो कुछ भी विसंगतियाँ होंगी या जो कुछ भी अंतर होगा उसको दूर किया जा सकता है
3: और इस बीच दिल्ली से योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं योगेश जी कार्यक्रम में स्वागत है प्रश्न पूछिए
4: आप सभी को नमस्कार मेरा सवाल ये है कि गोल्ड बॉन्ड होते पहले लोग काफी निवेश करते थे गोल्ड में तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश अच्छा माना जाता था और अभी सडनली गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है और कोई ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि इसको क्यों बंद किया गया है फिर कब तक ये बंद किया गया है और कई बार सुनने में आया है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं तो आपका इस पर क्या व्यू है और क्या ऐसा सच में कुछ नुकसान होने के स्कोप था इसमें गवर्नमेंट को जो वो देख नहीं पाए उस टाइम पे
1: देखिए जो गोल्ड बॉन्ड लाया गया था उसके पीछे मकसद ये था कि लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदें और उसकी वजह पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें एक तरीके से कागजी गोल्ड आप इसे कह सकते हैं और इसमें ये कहा गया था कि 8 साल के बाद जो कुछ भी बाजार की कीमत होगी उस कीमत पर आपको उसका भुगतान किया जाएगा तो इससे सरकार के लिए इसके लिए फायदे का सौदा यह था कि उनको आयात करने के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसके लिए जो डॉलर देना पड़ता है वो डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि सरकार सीधे सीधे आयात नहीं करती लेकिन जो भी एजेंसीज आयात करती हैं उनको डॉलर पे भुगतान करना पड़ता तो डॉलर के ऊपर दबाव कम करने और सोने के आयात को कम करने के लिए कदम उठाया गया लेकिन जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो उस समय किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि सोने के भाव इतने तेजी से ऊपर चले जाएंगे आज 1.61 का है और ये भी आप रखिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद जो था सरकार की उधारी का एक हिस्सा वो था तो अब अगर सरकार की उधारी बहुत महंगी हो जाती है तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को ही होगा बजट के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया था कि इसे क्यों जारी अभी नहीं रखा गया है और इसमें किस किस तरह के परेशानी हो सकती है सरकारी व्यवस्था को अगर आप देखें उनके ऊपर खर्च के बोझ को देखें तो इस वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है वो बंद किया गया है लेकिन जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए जो कुछ भी देनदारी है वो पूरी की जा रही है 8 साल का समय जब पूरा होगा उनको भुगतान होगा हर साल 2.5% की दर से ब्याज जो कि मूल जिस रकम पे आपने लिया था उस के हिसाब से 2.5% की दर से ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद आप प्री मिच्योर रिडम्पशन भी कर सकते हैं और 8 साल के बाद जब आप पूरा रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक भी पैसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा तो एक अच्छी स्कीम थी लेकिन इसकी लागत सरकार के लिए बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा है
0: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर जितेंद्र
5: हाँ हेलो हेलो सर हाँ सर एक प्रश्न

0: मैंने एक महीना पहले पूछा था, लेकिन शायद हम ठीक से पूछ नहीं पाए थे, तो इसलिए ठीक से जवाब नहीं मिल पाया। तो जैसे एक हम न्यूज पढ़े थे राजस्थान पत्रिका में कि कुछ कंपनियों का नाम था, वो नाम तो ले नहीं सकते, इंडियन कंपनी का, कि इनका मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब मार्केट कैप से भी ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये अच्छा बात है या कैसा, हम इसको कैसे कैसे रूप में लें?
1: देखिए जितेंद्र जी, मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप अगर बाजार पूंजीकरण को एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति के नज़रिए से सोचे तो जो शेयर की मौजूदा कीमत है और बाजार की जो में जितने शेयर उपलब्ध हैं उनको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास एक बाजार पूंजीकरण आता है। बाजार पूंजीकरण में नियमित तौर पर बदलाव होता रहता है, बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार पूंजीकरण ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो बाजार पूंजीकरण भी नीचे आ सकता है। अब आपका मूल प्रश्न है कि आपने कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ा कि उनका जो कुल निवेश है उनके बाजार पूंजीकरण से ज्यादा हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। उनके पास बस ये ध्यान में रखना है कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या है, यानी कि कितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है और उससे उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के वित्तीय स्थिति के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अगर संतुलित वे में है तो कोई गलत नहीं है, और ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है कि आपकी जो शेयरों की कीमत है उससे ज़्यादा आप लेते हैं, वो एक लेवरेजिंग होता है एक तरीके से, इसको कहते हैं, जिसके आधार पे आप बाजार से पैसा उठाते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो वो शायद थोड़ा सा उसके ऊपर एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि 10-15% ज्यादा है तो उसमें कोई हैरानी या कोई भी दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आती।
2: राइट शिशिर जी, टॉकिंग ऑफ द ओसेट फैसिलिटी इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन गुजरात इन सानंद दिस इवनिंग, यू नो दिस इज रियली हार्टनिंग। Almost 5 billion semiconductor chips capacity, annual capacity, production capacity. This is humongous given the importance of semiconductors across electronics industries and of course the new technology which is coming in, AI as well. So how do you see this kind of, if we look at our dependence on the foreign countries, especially Taiwan and other countries, China of course.
1: When you are developing a mobile handset, when you are becoming a leader in mobile handset export, you need a complete value chain. You need a complete supply chain. So first you develop the product, then you develop the component, now you need the semiconductor. So many of the companies are coming into this field, many of the projects have been approved. So with this kind of infrastructure, we are going to have a complete supply chain for the electronic goods. What we can, you can also call it as a second phase of Make in India. We started with the assembling a mobile handset, now we will have the entire components as well as the semiconductor, which is a key requirement for any electronic items. So this is going to help in that way. Second thing which you need to remember, that we have started with what we call as the chip designing, then we can go for the fabrication, and then we can go for the packaging. So on the one side, on the one hand, we are talking about the entire supply chain for electronic goods. On the other hand, we are talking about the entire ecosystem for the semiconductor. So combination of these two, after say 5 years or after say 4 years, we will be in a position to export large quantity of semiconductor chip from India, which is at this moment, you rightly mentioned that from where we are importing, whether we talk about Taiwan, whether we talk about China, or whether we talk about South Korea, because I mean recently these at least one of these country was in news because one of the key chip maker played a key role in the entire stock market thing. So we are not going to have that kind of situation, but the important thing for us that we will be becoming a good exporter, a big exporter of the semiconductor on the line of the electronic goods.
3: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखी गई, इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के माहौल के और बेहतर होने की संभावनाएं थी। इस सप्ताह की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 664 अंक यानी 0.86% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 215 अंक यानी 0.89% बढ़कर 24,271 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार का प्रदर्शन भी घरेलू शेयर बाजार जैसा ही रहा। निफ्टी मिड कैप में 0.6% से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में इस सप्ताह 2% का उछाल आया। सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एनर्जी सेक्टर नुकसान में देखे।

0: ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से जबरदस्त रिकवरी देखी गई। फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया 82 पैसे कमजोर हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.22 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली छमाही में बेंचमार्क इंडेक्स ने नकारात्मक रुख दिखाया। सेंसेक्स में 10.2% की गिरावट आई जबकि निफ्टी 8.7% नीचे आ गया। जबकि विस्तृत बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा, निफ्टी मिड कैप में लगभग 2.2% और निफ्टी स्मॉल कैप में 6.5% की बढ़त देखी गई।
1: शशि जी, द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स, इफ यू लुक एट द बैकड्रॉप ऑफ द लास्ट 4-5 months एवर सिंस द मिडिट्स और द वेस्ट एशियन क्राइसिस हैपन, आर द बैड डेज बिहाइंड अस एंड कैन वी लुक फॉरवर्ड टू greener pastures in the coming
2: years? Just last week I was talking to one of the largest mutual fund of the country, and the first line he said that the worst is behind us and we are on a better path. Now the key concern at this moment is, one is of course the monsoon. Of course we are coming out from the West Asia crisis.
1: El Nino. Yes.
2: So after West Asia, the biggest concern at this moment is El Nino. Because if we go by the number, I think 40% deficit was in the month of June. And when you are entering July, of course, we are seeing good spread of rain, but we do not know that what will happen. And if I go by the IMD forecast, they are saying that it will be below normal. So that is a real concern. And why this is a concern? Because 65% of population is in the rural area, 50% of labor force is in the rural area. So when the rural economy will be in distress, then of course entire economy will be in a problem, because we will not be having what we call as the virtuous cycle, but we may have the vicious cycle. That is a concern. And market is also, at this moment, they are talking more about the West Asia crisis, but they are also concerned, little bit concerned about El Nino, and the real impact will be after the Q1 results, which we are going to have from 11th of this month, 10th and 11th of this month.
1: Right, right.
2: So that then Q1 results will decide that what kind of direction we are going to have in the market in the month of July as well as in the month of August.
1: Absolutely.
0: Maharashtra se Mangesh phone line par hai. Mangesh ji, sawal puchhiye.
3: हाँ नमस्कार सर।
1: नमस्कार
3: सर, आईटी सेक्टर में निवेश करना अच्छा रहेगा कि आपके रहेगा निवेश करना, इसके बारे में पूछना था। और युद्ध का प्रभाव कहाँ तक रहा कि खत्म हुआ, उसके बारे में पूछना था।
2: अच्छा मंगेश जी, देखिए पहला जो आपका प्रश्न है आईटी सेक्टर का, ये एक कह लीजिए कि एक अजीब सी विडंबना भी है कि बीच में हमने देखा कि आईटी सेक्टर में इसलिए गिरावट है क्योंकि एआई में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और फिर ये भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी हुई क्योंकि एआई सेक्टर को लेकर के कंसर्न्स कुछ अलग तरीके के आ गए। फिर हमारे पास ये बयान भी आता है कि अभी के समय में भी पारंपरिक आईटी कंपनियों का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में आईटी कंपनियों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल के निवेश के नजरिए से सोचें, आप साल भर की बात मत करिए, 3 साल के निवेश के नजरिए से सोचिए, तो आईटी के वैल्यूएशंस अभी नीचे हैं और आपके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है। एक ही सुझाव है, किस्तों में खरीदें, एक साथ सारा पैसा ना लगा दें। दूसरा आपका प्रश्न था कि पश्चिम एशिया के संकट के बाद की स्थिति का क्या है। देखिए पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के कह सकते हैं कि शांति समझौता हुआ है, उसके बाद तकनीकी दौर की बातचीत चल रही है। हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सभी लोग उम्मीद करेंगे और खासतौर पे बाजार से जुड़े लोग तो खासतौर पे चाहेंगे। लेकिन बीच बीच में ऐसे से कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिससे कि इस शांति समझौते पे कुछ समय के लिए प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। तो अनिश्चितता थोड़ी है और उस अनिश्चितता को मानसून ने भी कुछ हद तक बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से अभी शेयर बाजार के लिए कहते ना कि चैन से सांस लेने का समय नहीं है, वहां पर अभी भी घबराहट की थोड़ी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। हाँ, आप रैली जो देख रहे हैं, ये 4 सप्ताह हमने लगातार 4th सप्ताह देखा कि शेयर बाजार में तेजी आई, उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह भी थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर बाजार में शायद थोड़ी हलचल अलग तरीके की देखने को मिलेगी।
1: राइट, और नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी
4: नमस्ते, गुड आफ्टरनून।
1: नमस्कार
4: सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट फॉरेन रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या अभी वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर स्लाइड डाउन इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ

0: खास तौर पर डेट फंड हैं उसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो। और कुछ पैसा मेरी सलाह होगी कि डाकघर में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है उसमें ज़रूर रखिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हेजिंग है आपके लिए, जिसको कहते हैं ना सुरक्षा आपको देगा। वैसे बॉन्ड में कहते हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षा तो रहता है, रिस्क तो है, जोखिम है वहाँ भी, लेकिन और भी बेहतर करना हो तो थोड़ा पैसा 15-20% आपकी जितनी भी कमाई है वो आप डाकघर के सीनियर सिटीजन में ज़रूर रखें।
1: And moving on to oil now, the global crude oil prices are hovering near the levels last seen before the West Asia conflict erupted in late February, as traffic through the Strait of Hormuz has improved amid progress in the US-Iran talks. A spokesperson for Qatar's foreign minister said in a social media post that the talks made positive progress on the matters related

0: in a social media post that the talks made positive progress on the matters related to the memorandum that halted the war in June. During the week at the Intercontinental Exchange, that is ICE, Brent crude September futures dropped nearly 0.7% to settle at $72.12 per barrel, while the West Texas Intermediate WTI August futures declined 0.6% to end at $68.82 per barrel. Shishirji, of course, you know, the decline from almost near about $120 to $72 with the crude is on expected lines, but we are talking here of the energy sector stocks. What do you think of that when we look at this crude sector?
1: There are two parts. One, you rightly mentioned about the slide in the crude oil prices. And at this moment, we are seeing some good performance by the oil marketing companies in terms of what we call as the under recovery. Their under recovery has come down. So that is one positive for them. And we should also remember that during this period, they bought large quantity of crude at a very high price. So until unless that supply is exhausted,
0: yes,
1: they will not be in a very comfortable position. So their under recovery has come down, but that has not come down much below than what we are saying about the pre-war release. So at this moment, I believe that the OMC companies, there should be some kind of caution, at least for the next 1 month. And after this supply is exhausted, and if the prices of Indian basket of crude is hovering around say 70-75, then they will be in a better position in second quarter. So somebody, if somebody is planning to make put money in the oil marketing company stock, they should wait at least for one month or 2 months, then they can plan for making fresh investment into that.
0: Right.
2: गुजरात में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया है कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सूरत से बिलिमोरा को जोड़ने वाला पहला परिचालन खंड अगले साल खुलने वाला है। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य ₹1,875 प्रति क्विंटल से बढ़कर अब ₹2,125 प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। शिशिर जी, एक प्रश्न आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि आने वाला जो सप्ताह है उसमें बाजार को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब आपने Q1 रिजल्ट की बात की है, पहली छमाही भी गुजर चुकी है।
1: देखिए, अगले सप्ताह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो Q होगा वो हमारे लिए रिजल्ट्स ही हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होता है, तो उसके अनुमान में कुछ नए गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। तो बाजार थोड़ा सबड्यूड रहेगा, जो हमने चार सप्ताह से तेजी देखी है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हम देखेंगे, एक सबड्यूड माहौल रहेगा। नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे अगले 20-25 दिनों के भीतर, उसके बाद बाजार में गतिविधियां और तेज होगी, लेकिन अगले सप्ताह मुझे लगता है कि थोड़ी सी हलचल उस तरीके की देखने को नहीं मिलेगी जो हमने पिछले दो सप्ताह के दौरान
2: देखी। तो छोटे निवेशकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिलहाल अभी।
1: किस्तों में शेयर खरीदिए, जहां कहीं भी आपको गिरावट अच्छी दिख रही है वहां पर आप किस्तों में खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा गिर गया उसको मत खरीदिए। जो गिरे हैं, थोड़े गिरे हैं, उनमें आप किस्तों में खरीदिए और किस्तों में मुनाफा कमाना भी मत भूलिए।
0: वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम शशि जी, फ्रॉम यू, हाउ डू यू सी द स्मॉल कैप्स फेयरिंग?
1: स्मॉल कैप आई थिंक have always been either going on a very high or going on a very low. So personally, I am not very small cap is not very favorite for me. I would rather go for the mid cap where some of the companies are very good.
2: Right. शिशिर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
0: Thank you so very much, शिशिर जी. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Crompton Greaves semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Gujarat. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight week. Sensex and Nifty jumps nearly 1%, and the monsoon session of Parliament to begin on the 20th of this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Nikhil Kumar saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में हम आपके लिए लेकर आते हैं सुनहरे दौर के उन चुनिंदा नगमों को जिसे आप बेहद पसंद करते हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब है। और कहते हैं कि इश्क की शुरुआत जितनी मीठी होती है उतनी ही अनिश्चित भी। दिल में नई नई धड़कनें जन्म लेती हैं, सपने आंखों में सजने लगते हैं और फिर एक सवाल बार बार मन में दस्तक देता है, आगे क्या होगा। आज हम आपको लिए चलते हैं 1962 के उस सुनहरे दौर में जब संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता था। उस दौर की एक बेहद नाजुक, रोमांटिक और सदाबहार पेशकश फिल्म हरियाली और रास्ता का ये यादगार बेहद खूबसूरत गीत। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है लता जी ने और दर्द भरी आवाज के बादशाह मुकेश साहब ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी साहब ने और इसे अपने मधुर धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:53 और 15 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि इश्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर बात जबां से नहीं की जाती। कभी एक मुस्कान, कभी झुकी हुई नजर, तो कभी एक मासूम सा इशारा दिल की पूरी दास्तान बयान कर देता है। आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। खामोश इजहार मोहब्बत की मीठी सी कहानी सुनाता है और दिल में उतर जाता है। और यह नगमा है सन 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली से। ये सदाबहार युगल गीत मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की बहुत ही सुरीली आवाजों में बेहद खूबसूरत दिल में उतर जाने वाला है। एसएच बिहारी यानी शमसुल हुदा बिहारी साहब के खूबसूरत बोल और ओपी नैयर साहब के चुलबुले मधुर संगीत ने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो आइए मुस्कुराइए और प्यार के उन नाजुक इशारों को महसूस कीजिए जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ जाते हैं।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजलि रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं।

डॉक्टर दिवाकर आज किधर की ओर? अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा। बस घर जा रहा हूँ माँ के पास, ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से बने वो पहाड़ भी। उसकी खूबसूरती, वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ के जाड़े

उन्हें याद आने लगे बचपन के वो दिन जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का अथक परिश्रम देखकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती। अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों ना तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव

गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां पर बरसों पहले उसके बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे, देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी, बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो, घर में तो बहुत सारे फल हैं। वो हंस पड़ी, उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है,

इस बात को कितने वर्ष बीत गए, जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहां कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहां अकेला रहने दूं? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यही रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है, वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे, अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी, हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहां? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था

कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया, बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी, हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्न सूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है, और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी, मेरी बहुत मदद करती है। बेचारी पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई तो है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले, दिवाकर बोला। माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया। तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था, धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते, कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव, कैसे हो तुम, पिताजी कहाँ हैं? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए, पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा गई।

माँ से पूछा, तो क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी? बेटा यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद तो बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे, बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ। माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां? दवाइयां मैं लेकर आया हूं ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली, अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा।

उसके मन का तनाव और दिमाग की चिंताएं कपूर बनकर उड़ गई थीं। बेटा बहुत रात हो गई है, जरा अंकिता को घर तक तो छोड़ाओ। वो आगे आगे निकल पड़ा और अंकिता पीछे। गांव कितना सुनसान हो गया है, पहले जैसा समय होता तो छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, यहाँ सुविधाएं भी तो नहीं है, सब कुछ बहुत दूर है। सही कहा आपने, दुकान से अस्पताल, स्कूल, बाजार, दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है, पर इस वजह से कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता ना। मैं तो यहीं पर हूँ, मेरी दुनिया यही है और मेरा स्कूल भी यहीं, और हाँ चाची जी भी तो यहीं हैं। पर मेरा अस्पताल तो दिल्ली में है ना, दिवाकर बोले। आप यहाँ भी तो अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, अंकिता ने धीरे से कहा। वो चुप रह गया, बोला लीजिए आपका घर आ गया। डॉक्टर दिवाकर वापस मुड़े तो एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उनका पीछा करती रहीं। अगले दिन डॉक्टर दिवाकर को वापस दिल्ली जाना था। वो जानते थे कि अस्पताल के कई मरीज उनका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत सा काम बाकी था। माँ लगी थी सामान बांधने में, अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाया गया कितना ही खाने पीने का सामान गाड़ी में रख दिया था। जब डॉक्टर दिवाकर अपना सूटकेस गाड़ी में रखने आए तो देखा साथ में अंकिता भी खड़ी है और माँ की मदद कर रही है। पता नहीं क्यों उनके मन के एक कोने में संतोष भर गया। एक मन जो हमेशा यही रहता था इन्हीं घाटियों में, उस मन में घाटियों की ठंडक उतरने लगी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की ओर निकल गया और दरवाजा खोल दिया। ध्यान से जाना बेटा, माँ ने कहा। डॉक्टर दिवाकर ने माँ के चरण छुए। माँ क्या तुम सच में साथ नहीं आओगी? माँ मुस्कुरा दी, बोली मेरी जगह वो नहीं है बेटा, और हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर दिवाकर की नजरें माँ के पीछे खड़ी अंकिता से टकराई, बोले सोचता हूँ अस्पताल की नौकरी छोड़कर यहीं पास में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूँ। माँ यहाँ के लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। उनकी नजरें फिर अंकिता से मिली, दो बड़ी बड़ी आंखें जमीन को देख रही थी। इधर माँ कहे जा रही थी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी धरती, तुम्हारा अपना गांव, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। बच्चे बाहर पढ़ने तो जाते हैं पर यहाँ कोई लौट कर नहीं आता, उसके बाद बस शहरों में बस जाते हैं। काश वो वापस आते अपने गांव की ओर, यहाँ आकर डॉक्टरी करते। अगर तुम यहाँ आओगे तो पता नहीं कितने लोगों के प्राण बचेंगे। डॉक्टर दिवाकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो वापस आएंगे। उन्हें सामने अपना एक सुनहरा भविष्य दिखलाई दे रहा था। बोले माँ मैं लौट कर आता हूँ। माँ और अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।

तो दोस्तों, ये थी कहानी वापसी जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 वोटरों में से 32% से ज्यादा लोगों को गणन प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार शनिवार तक कुल 46,54,989 गणना प्रपत्र बांटे गए और 1,46,438 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। SIR प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जैकब बैथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रात के इस पहर में। 1:11:04 हुए हैं। गीत सुहाने लेकर अंजलि है आपके साथ। गीत सुहाने उन गीतों की बहार आपके लिए जो सचमुच आपके दिल को सुहा जाए, आपके मन को भा जाए और आपके दिलो दिमाग पर छा जाए। कोशिश पूरी रहेगी रात के इस सफर में दिल की गहराइयों में कोई उतरे, मन मस्तिष्क में बनी तस्वीर में कोई संवरे, या फिर इसके उलट दिल में चुभे नश्तर पर कोई मरहम की तरह मुलायम एहसास बन जाए, या फिर दिल की चुभन दर्द कोई जख्म शब्दों के जरिए बाहर निकल जाए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, कुछ ऐसा रिश्ता है हमारा और उनका, याद ना भी करें तो भुलाया भी नहीं जाता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 इस वक्त गीत सुहाने के इस सुहाने से सफर पर अंजलि के साथ हैं आप। तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, तेरी आंखों के ये जो काजल हैं, मेरी रातों के काले बादल हैं, और ये जुल्फ जो गालों को छूती है जैसे सावन की पहली हलचल है।

आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। आंखों से जो उतरी है दिल में वो बात ही कुछ और है। लफ्जों में बयां जो हो ना सके, लफ्जों में बयां जो ना हो सके, उस मोहब्बत की गहराई ही कुछ और है। और दिल वही सब तो ढूंढता है।

रात चुपचाप दबे पांव चले जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी मेरी नज़दीकियों की इस खामोशी को सुन पाते हैं।

ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा होठ पे लिए हुए दिल की बात, हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम।

कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, कुछ इस तरह से तेरी और मेरी कहानी है, छुपी हुई आंखों में कोई अनकही सी कहानी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का

0: सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना पत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में, खुशबू की तरह आया वो मेरी जिंदगी में और सांसों में इस तरह बसा कि जुदा होना मुश्किल हो गया।

0: समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब समझ नहीं आता, एक तुम ही तुम नजर आते हो जहां तक दिल जाता है।
1: इतना काम, बीमार पड़ जाओगे। वैसे नाटक किस लिए?
2: तुम्हें ये नाटक नजर आ रहा है? मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है।
1: इतने बड़े घराने की लड़की होकर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे एक इशारे पर सैकड़ों नौकर आकर ये काम कर जाएंगे, फिर ये दिखावा की।
2: मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ। यूसुफ की माँ हमारे यहाँ नौकरी किया करती थी, बचपन में उसी ने मुझे पाला, माँ से ज्यादा प्यार दिया। जब उसकी अपनी बेटी जूनी मर गई तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आ गई। अब जब भी मैं कश्मीर आती हूँ कुछ दिन उनके साथ बिताती हूँ, उनके लिए वही सब करती हूँ जो उनकी अपनी बेटी किया करती थी। इससे मुझे चैन मिलता है और एक तरह का सुख भी। मैं ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, अब भी नहीं समझे आप। मैं आरती हूँ, काजल की बेस्ट फ्रेंड। उसे नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया, जानते हैं वो यहाँ सिर्फ आपके लिए आई है, बचपन से उसे जानती हूँ।

0: बहुत जिद्दी है। अगर वो आपके लिए यहाँ तक आ सकती है तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। आप खड़ी खड़ी देख कह रहे हैं, अगर वो अभी चली गई तो आप जिंदगी भर तरसेंगे, पछताएंगे।
1: काजल, आई एम सॉरी काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
0: तो कहो।

इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। ये तो वो एहसास है जो बस रूह से रूह तक होता है।

तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम हो जाए, तो इस जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम हो जाए।

दिन का हर एक लम्हा, रात की हर एक घड़ी बस तुम्हारी यादों की उंगली थामे गुजरती है। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं मोहब्बत में जहां ना वक्त का होश रहता है और ना दुनिया का।

इसी के साथ अब अंजलि आपसे लेगी इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार और आगे का सफर एफएम गोल्ड का जारी रहेगा आपके लिए रूपा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में

0: प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal.

स्वागत है आप सभी का हमराही कार्यक्रम में। आज आपके लिए संजोकर लाए हैं हम हमराही कार्यक्रम में वो युगल गीत जिसमें प्यार का मीठा एहसास है, जिसमें दो दिलों की कहानी है, एक दूजे में खो जाने की प्यार भरी दो दिलों की दास्तान है। इन युगल गीतों के साथ सजाकर आपके लिए लाए हैं हम राही कार्यक्रम। जी हाँ, और आज के हम

जी हाँ, हमराही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और सुन रहे हैं हम हमराही के जरिए मोहब्बत की कहानियाँ। जी हाँ, प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए कुछ युगल गीतों को याद कर रहे हैं हम, जिन्हें आज भी हम दिल लगा कर सुनते हैं, जो आज भी हमारे जहन में समाये हुए हैं। चलिए सुनते हैं अगला ही नगमा हमराही कार्यक्रम में, और आज आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। वक्त हुआ है 3:23 और 17 सेकंड।

आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, आज फिर तुमसे मुलाकात हुई, जैसे सूखी जमी पर बरसात हुई। बातों में कुछ खामोशी भी थी, बातों में कुछ खामोशी भी थी, आंखों में लेकिन 100 बात हुई।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ दिल की धड़कनें ही समझ सकती हैं। सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा जिसके शब्द बहुत ही खूबसूरती से पिरोए गए हैं। फिल्म है आप आए बहार आई, और इसमें क्या महसूस कर रहे हैं दो दिल, आइए जानते हैं।

वाकई प्यार के एहसास को दोस्तों शब्दों में बताना मुश्किल होता है। इस एहसास को सिर्फ और सिर्फ धड़कने ही समझ सकती हैं। सुनते हैं अगला नगमा ऐसा ही कुछ बेहद ही खास। इस नगमे को हम ले रहे हैं फिल्म मन मंदिर से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

हमराही में आप सुन रहे हैं उन युगल गीतों को जिन्हें आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, बार बार गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से।

दुनिया की रस्मों से चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, वक्त के थपेड़ों से चाहे राहें कितनी भी जुदा हो जाएं, पर जो रूह से बंधा है वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। ये सच्चा प्यार है साहब, जमाने के आगे कभी झुकेगा नहीं।

और आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसे अपनी पुरनूर आवाज से सजाया है लता जी ने और उनके साथ नरेंद्र चंचल जी ने। फिल्म दो शत्रु जिसके संगीतकार हैं आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी, और सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल

0: को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा की भी संभावना लगाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century. But India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jay Shankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month.

जिसके भीतर अरुणिमा सा उजाला होता है उसका हर रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। जी हाँ, अरुणिमा यानी सुबह की लालिमा या उगते हुए सूर्य की चमक। अदब में साहस को समर्पित ये खूबसूरत सा नाम और अरुणिमा बनकर धीरे धीरे अंबर पर नया सवारा लेकर आ रही है वो रोशनी की किरण और रात के हर अंधेरे को मिटाती जाएगी धीरे धीरे। स्वागत है आप सभी का अरुणिमा में, जहां आपके साथ हूं मैं आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आपकी यादों में रचे बसे हम और हमारी यादों में रचे बसे आप, तो ऐसे में क्यों ना एक गीत आपके नाम कर दिया जाए।

साथियों, अरुणिमा का ये सफर जहाँ धीरे धीरे रात गहराती है और सुबह की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अपनी चादर तानने की तैयारी करती है, वहीं ठंडी हवा के झोंके

0: कानों को सुकून देती खामोशी भी अपने पांव पसार लेती है। इस खामोशी में एक अलग ही एहसास है, ठहराव का। आइए इसे महसूस करें कुछ चुनिंदा गीतों के साथ। मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर साहब की पुरनूर आवाज में आप सभी के लिए।
1: मुझे सारे गामा नी धा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो मानेंगे नहीं, हमारी जो जनता है ये सोच नहीं सकती। मैं मुझे कुछ नहीं आता।

साथियों, हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसका मन उसके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक की तरह काम करता है। सकारात्मक विचारों और आत्मनियंत्रण से हम अपने मन को बेहतरीन सोच की दिशा में मोड़ सकते हैं। यकीन नहीं आता तो करके देखिए और फिर हमें बताइएगा। कहाँ पर? आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल आप जुड़े हैं अरुणिमा में रूपा धवन के साथ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा के इस खूबसूरत से सफर पर, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात।

दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हैं। हर नया दिन अपने साथ नया अवसर और नई ताकत लेकर आता है। अगर आप मजबूत और सक्षम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर यानी खुद पर विश्वास रखना होगा। जी हाँ, आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको निखारता है और संवारता है। अरुणिमा के सफर पर हम सुन रहे हैं कुछ गीतों को और बातें कर रहे हैं सकारात्मक सोच वाली। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जहां आप हैं रूपा के साथ।

कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, यानी चुनौतियाँ, मुश्किलें जिनका सामना हम करते हैं, पर ये मुश्किलें हमारा रास्ता रोकने नहीं बल्कि रास्ता सिखाने के लिए आती हैं। बस हमें धैर्य से काम रखना होता है। वक्त चाहे कैसा भी हो बदलता ज़रूर है, बस हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत कभी ना कभी तो एक ना एक दिन तो जरूर रंग लाएगी। कारवा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में।

समय हो चला है 4:44 और 35 सेकंड। आप हैं रूपा धवन के साथ अरुणिमा कार्यक्रम में। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं आपकी और आपकी खुशियों की। जी हाँ, हमारा जीवन जो है ना, जो हमें मिला है, हमें उसके लिए अगर खुशी और शांति की तलाश है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे पास है उसका शुक्रिया मानिए और जो पाना है उसके लिए प्रयास कीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि विचार ही आपका और हमारा भविष्य तय करते हैं। सुनते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

साथियों, हमने बात की खुशी और शांति की। खुशियां सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सादगी तो उसमें है जब हम दूसरों की भी मदद करते हैं, और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम किसी बेसहारा की मदद करते हैं या जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, और उसके जो खुशी के पल होते हैं, आँखें बयां करती हैं उन खुशी के पलों को जब आप उनकी सहायता करते हैं। वो लम्हा अपने आप में एक छोटी सी कहानी कह जाता है। तो ऐसे खुशी के मौसम हम सबकी ज़िंदगी में आए तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। आक्रमण फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज़ में।

कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को खूबसूरत बनाकर आने वाले कल को ज़रूर संवारा जा सकता है। अरुणिमा का सफ़र सिर्फ यहीं तक। अभी भोर सुहाने लेकर फिर से आपके साथ रहूँगी और अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। तब तक के लिए विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने

0: करने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. In a social media post, Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make the necessary corrections. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1,800.

भोर सुहानी लेकर आई ठंडी हवा का झोंका, कलियों ने भी आंखें खोली, मिला नया एक मौका। चहक रहे हैं पंछी सारे, गूंज रहा आकाश, भोर सुहानी बिखेर रही है चारों ओर प्रकाश। हरी घास पर ओस की बूंदें चमकी बनकर मोती, भोर सुहानी बिखराए जग में सुख की पावन ज्योति। जी हाँ, रात का हर अंधकार मिटाकर, सब परेशानियां मिटाकर, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर भोर सुहानी आ गई है। कुदरत का ये निराला रूप हम सबके जीवन में एक नए उजाले के साथ आया है और हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, नमस्कार। आइए स्वागत करें इस सुहानी सी भोर का और नाम लें उस प्रभु का जिसने हमें एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया।

सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंबर पर छा रही है, सूरज भी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। इस भोर सुहाने की सुंदरता कुदरत में किस तरह से समाई है, ये आइए जानते हैं इस गीत के माध्यम से।

किसी ने क्या खूब कहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको अस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। माना कि जब मुश्किलें आती हैं हमारे ऊपर तो हमें हताशा तो होती ही है, लेकिन उस हताशा में से भी आशा की किरण छोटी सी कहीं ना कहीं से झांक रही होती है, जो उस समय हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब हम हिम्मत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो उस आशा की किरण का दामन थाम कर हम आसान से उन मुश्किल राहों को पार कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक अंधेरा है तो लाखों सितारे भी हैं हमारी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी की राहों को रोशन करने के लिए।

जो हमारे दोस्त अभी जुड़े हमारे साथ, तो आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये समय है भोर सुहानी कार्यक्रम का और इस वक्त समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:30:15। आप हैं रूपा के साथ। तो दोस्तों, भोर सुहानी जो है ना, भोर सुहानी हमारे लिए कुछ चुनौतियाँ भी लाती हैं, कुछ खुशियाँ भी लाती हैं। माना कि हर कदम पर एक नई ताजगी भी होती है और कुछ गहराई भी होती है, जी हाँ, जो पिछले दिन की यादों से जुड़ी हुई होती है। पर अगर लालिमा चाही है और हमारे लिए एक ऐसा संदेशा लाई है कि सूरज ने अंगड़ाई ली है और कुदरत में ऐसा रंग घुल गया है कि उस रंग में हमें भी रंगने का संदेश देती है भोर सुहानी, तो हम क्यों ना उसके रंग में रंगे। लबों पर हमें हंसी लेकर, आंखों में नए ख्वाब सजाकर, इस भोर सुहानी का खुलकर मुस्कुराकर स्वागत करना है और धन्यवाद देना है कि आज उम्मीदों के साथ हमें कदम बढ़ाने को एक बार फिर से भोर सुहानी हमारे साथ आई है, कदम से कदम मिलाकर। तो क्यों ना इस भोर सुहानी को मिलकर सब गाते हुए दिन की शुरुआत करें।